केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आय आय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवाया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवाया शेक्या।

केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया शेका।